0: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूटी लग रही हो, वैसे सिंगल हूँ दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो,
1: कुछ भी करा रहा हमसे कहना, यहाँ के डाउन है हम।

0: SBS South Asian।
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: ठोकरे खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: SBS South Asia, Australia's destination for everything South.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 10 मई 2026 की मदर्स डे वाली शाम और आप सभी को वृषाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज तो बेहद खुश होंगे. आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों कैमरगिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज आपके लिए बस एक सवाल, आप आज अपनी माँ को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे और ये भी कि आप अपनी माँ को क्या कहकर बुलाते हैं, बताइए मुझे 04397997667 पर. लेकिन कार्यक्रम में सबसे पहले सुनेंगे आज के संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया में पेरेंटल लीव की और इसके बाद सुनेंगे सप्ताह भर की बड़ी खबरें आज के न्यूज रैप में, जिसके बाद लेकर के आऊंगी SBS न्यूज फ्लैश में एक मदर्स डे स्पेशल स्टोरी और फिर चलाएंगे सिर्फ आपकी पसंद के गीत आज की स्पेशल मदर्स डे की गीतों की रेलगाड़ी में. आज आपको मुझे बताना है कि अपनी माँ के लिए आप आज मुझसे कौन सा गाना बजवाना चाहते हैं, बताइए मुझे. और ये भी बताइए कि आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं. 04397997667 पर भेजिए अपने संदेश. जब तक आपके संदेश मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपको लिए चलती हूँ संक्षिप्त समाचार की ओर. पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वृषाली जैन के साथ. न्यू साउथ वेल्स के ग्रामीण क्षेत्र वाली फेडरल सीट फेरर में मतदाताओं ने इतिहास में पहली बार किसी गैर कोएलिशन उम्मीदवार को चुना है. वन नेशन के उम्मीदवार डेविड फाले ने दक्षिण ग्रामीण न्यू साउथ वेल्स की सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है. उन्होंने दो उम्मीदवारों के बीच अंतिम मुकाबले में लगभग 59% वोट हासिल किए हैं. निर्दलीय उम्मीदवार मिशेल मिलथॉर्प ही ऐसी उम्मीदवार रही जिन्होंने उन्हें कड़ी चुनौती दी. फेरर सीट पिछले करीब 25 वर्षों से पूर्व लिबरल नेता सूजन ली के पास थी. उन्होंने फरवरी में इस्तीफा दे दिया था जब एंगस टेलर ने पार्टी नेतृत्व में उन्हें हरा दिया था. वहीं नेशनल्स नेता मैट कैनवन ने कहा कि मतदाताओं ने इस चुनाव में गठबंधन दलों के खिलाफ स्पष्ट संदेश दिया है. हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि 2 साल बाद होने वाले अगले फेडरल चुनाव तक गठबंधन फिर से मजबूत तैयारी के साथ लौटेगा. वहीं इस मदर्स डे पर अकेले बच्चों की परवरिश करने वाली माताओं को विशेष रूप से सराहा जा रहा है. इसी भावना से सिंगल मदर्स फैमिलीज ऑस्ट्रेलिया ने रेज्ड बाय हर नामक अभियान शुरू किया है. इस अभियान के जरिए अकेले बच्चों का पालन पोषण करने वाली माताओं की कहानियां और उनके प्रति आभार के संदेश साझा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया में हर 5 में से 1 माँ सिंगल मदर है और वे मिलकर करीब 12 लाख से अधिक बच्चों की परवरिश कर रही हैं. वहीं स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी की 2025 की एक स्टडी में पाया गया कि एकल अभिभावक परिवार ऑस्ट्रेलिया में गरीबी, आवास संबंधी तनाव और आर्थिक दबाव का सबसे अधिक दंश झेलने वाले लोगों में शामिल हैं. दूसरी ओर एक सीनेट जांच में मेडिकेयर व्यवस्था में मौजूद खामियों और ग्रामीण इलाकों के मरीजों को हो रही परेशानियों पर चिंता जताई गई. नवंबर 2025 में लागू हुए नए नियमों के तहत अब मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेली हेल्थ सुविधा पाने से पहले मरीजों को साल में कम से कम एक बार डॉक्टर से आमने सामने मिलना जरूरी है. सरकार का कहना है कि ये बदलाव मरीजों की देखभाल में निरंतरता बनाए रखने के लिए लाया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए इस नियम की वजह से मनोवैज्ञानिक सहायता पाने में लंबा इंतजार करना पड़ रहा है. ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट की एक विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा मेडिकेयर व्यवस्था घनी आबादी वाले क्षेत्रों को अधिक लाभ पहुंचाती है क्योंकि ये फी फॉर सर्विस मॉडल पर आधारित है, जहां ज्यादा मरीज देखने पर अधिक भुगतान मिलता है. अगर आपको या आपके किसी परिचित को सहायता की आवश्यकता है तो बियॉन्ड ब्लू से 1300-224-636 पर या लाइफलाइन से 131114 पर संपर्क करें. वहीं ब्रिस्बेन में पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे एक किशोर की होटल की बालकनी से गिरकर मृत्यु हो गई. अब पुलिस कार्यवाही की जांच की जाएगी. ये घटना शनिवार शाम स्प्रिंग हिल इलाके के एक होटल में हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि संपत्ति से जुड़े कई अपराधों में वांछित कुछ लोग वहां मौजूद हैं. क्वींसलैंड पुलिस सर्विस के अधिकारियों ने होटल की छठी मंजिल पर पहुंचकर अपनी पहचान बताई और फिर कमरे में प्रवेश किया। कार्यवाहक चीफ सुपरिंटेंडेंट साइमन टेलर ने बताया कि पुलिस के कमरे में दाखिल होते ही एनरली इलाके का 18 वर्षीय युवक भागने की कोशिश करने लगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख टेड्रोस गेब्रियोसिस ने स्पेन के टेनरीफ द्वीप के लोगों को आश्वस्त किया है कि हंटर वायरस कोविड जैसा नहीं है। ये बयान ऐसे समय आया जब वायरस से जुड़े क्रूज जहाज एमवी हॉन्डियस के टेनरीफ पहुंचने की तैयारी चल रही है। WHO, स्पेनिश अधिकारियों और क्रूज कंपनी ओशन वाइड एक्सपीडिशंस ने कहा है कि फिलहाल जहाज पर मौजूद किसी भी व्यक्ति में वायरस के लक्षण नहीं है। हालांकि इस प्रकोप के बाद अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जहाज से उतरे 5 यात्री वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस गेब्रियोसिस शनिवार देर रात टेनरिफ पहुंचे, जहां वे यात्रियों के और क्रू सदस्यों के सुरक्षित उतरने की प्रक्रिया का समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी का डर और उससे जुड़ा मानसिक आघात अब भी लोगों के मन में ताजा है, इसलिए चिंता तो स्वाभाविक है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने देश की राजनीति की तस्वीर बदल दी है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी TVK ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सत्ता में जगह बना ली है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। केरल में UDF की वापसी हुई है, वहीं असम और पुडुचेरी में NDA ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। हाल ही में हुए उपचुनावों में भी बीजेपी ने कई राज्यों में बढ़त दर्ज की, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी सीटें बरकरार रखी। इसी के साथ आज के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। समाचार के बाद अब आइए प्रस्तुत करने जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में ऑस्ट्रेलिया के पेरेंटल लीव व्यवस्था पर अहम जानकारी। इसके अलावा आज मदर्स डे पे आप मुझे बता रहे हैं कि आप अपनी माँ को क्या कह कर के पुकारते हैं और आप उनको आज कौन सा गाना सुनवाना चाहते हैं। 04397997667 हमारा नंबर है, भेजिए संदेश। तब तक प्रस्तुत कर रही हूँ ये अंश। ऑस्ट्रेलिया में कुछ माता पिता अपने नियोक्ताओं या सरकार से पेरेंटल लीव भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हर कोई इसके लिए पात्र नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के आज के अंश में जानेंगे कि कौन कौन से लाभ उपलब्ध हैं, कौन इन्हें प्राप्त कर सकता है और इनका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। भाई, बच्चों का जन्म एक खास और उत्साहजनक समय होता है, लेकिन ये आर्थिक तनाव भी ला सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार और नियोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले पेरेंटल लीव भुगतान इस बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं, जिससे माता पिता अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहते हुए आय प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीकल्चरल सेंटर फॉर वुमेन्स हेल्थ की मुख्य सचिव डॉक्टर एडेल मोडोलो भुगतानित पेरेंटल लीव के व्यापक सामाजिक और आर्थिक लाभों पर जोर देती हैं।
3: It contributes so much to our community, not just, you know, taking kind of some pressure off women themselves when they're parenting or other parents when they're parenting, but also contributing so much to care of children. So even though we think of people being on parental leave as not being productive, actually they're being very productive.
2: Parental leave pe Australiai sarkar dwara diya jane wala ek bhuktan hai jo parivaron ko navjat ya 2 saal se kam umr ke god liye gaye bachchon ki dekhbhal ke liye kaam se chutti lene mein madad karta hai. पेरेंटल लीव पे योजना को प्रबंधित करने वाली सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया के जनरल मैनेजर हैंक योगन बताते हैं कि आने वाले समय में इस योजना में क्या बदलाव देखे जा सकेंगे।
4: The arrangements here in Australia are pretty flexible because the payment can be shared between parents. It's paid for a period of up to 22 weeks. That increases to 24 weeks from the 1st of July in 2025, and it then increases to 26 weeks after the 1st of July 2026. In addition to that, from the 1st of July 2025, it will also include superannuation contributions.
2: इसका भुगतान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के आधार पर किया जाता है, जो 5 कार्य दिवसों के सप्ताह के लिए 905 $15.80 है। पेरेंटल लीव पे के पात्र होने के लिए आपको बच्चे का प्राथमिक देखभाल करता होना होगा और काम व आय का परीक्षण पूरा करना होगा। हैंक योगिन ये भी बताते हैं कि भुगतान पाने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियाई निवासी होने के साथ साथ वीजा की कुछ विशेष आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा।
4: When your child is born or adopted, you must be living in Australia. And you either need to have an Australian citizenship, a permanent visa, a special category visa, or certain temporary visas, for example, temporary protection visa.
2: आपको बच्चे के जन्म या गोद लिए जाने से पहले कम से कम 2 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रहना आवश्यक है। विदेश में बिताया गया समय इस अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा। हैंक योगिन सुझाते हैं कि सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट servicesaustralia.gov.au पर अपनी पात्रता जांचने के बाद आप अपने MyGov अकाउंट से सेंटर लिंक पर आवेदन कर सकते हैं।
4: Now the beauty of using MyGov to access Centrelink is that one, it leads to a range of information, but it also provides you the opportunity of lodging an online claim, which is undoubtedly the easiest way to claim.
2: वे समझाते हैं कि माता पिता अगर दोनों ही पात्र व्यक्ति हैं, तो वे पेरेंटल लीव पे को आपस में साझा कर सकते हैं।
4: The payment is designed in such a way that it accommodates different family arrangements. So you can claim if you're the birth mother's partner, the child's biological father, or the partner of the child's biological father. But it's important to understand that the birth mother must agree to those arrangements and must approve any payments that are going to either the partner or other relevant family members.
2: डॉक्टर अडेल मोडोलो का कहना है कि इस भुगतान की सबसे अच्छी बात यह है कि एक बच्चे की परवरिश में माता पिता के समय की कीमत को समझती है।
3: We really want men to step up more and take more of a role in looking after children, especially in the early year or years. And this is a way of men being able to be supported while they do that.
2: Parental leave पे एक बार में या अलग-अलग चरणों में ली जा सकती है। Hank Yogan बताते हैं कि जिन दिनों के लिए आपको भुगतान मिलता है, आप उनमें काम नहीं कर सकते।
4: The other things that you need to let us know is any changes in circumstances. For example, if you return to work or you plan to work on days where parental leave pay is being made, or you want to change a nominated date, because you cannot be working on a day where you are being paid parental leave pay. So they're the sorts of situations that you must let us know. Of course, if you're leaving the country, either temporarily or permanently, you also need to let us know.
2: Parental leave pay मृत जन्म या शिशु मृत्यु के मामलों में भी उपलब्ध होती है। अतिरिक्त सहायता के लिए सर्विसेज ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पर 75 से अधिक भाषाओं में जानकारी उपलब्ध है और सेंटर लिंक के बहुभाषी कॉल सेंटर से 131202 पर संपर्क किया जा सकता है।
4: We understand that migrants and newly arrived people in Australia face language barriers. If you head to our website and search your language, you'll find that there's information to read, watch, or listen to in over 75 languages. We even have audio products in 10 languages, and of course we operate a multilingual call center service, and the number for that is 131202 for Centrelink payment.
2: ऑस्ट्रेलिया में लगभग 68% नियोक्ता पेरेंटल लीव भुगतान प्रदान करते हैं। ये सरकार की पेरेंटल लीव पे योजना से पूरी तरह से अलग होता है। इन भुगतानों की पात्रता और नियम अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने नियोक्ता से संपर्क करें और अपने एंटरप्राइज अग्रीमेंट की जानकारी लें। अफनान मलिक 2.5 साल के बच्चे के पिता हैं। वे अपने नियोक्ता और सरकार दोनों से ही पेरेंटल लीव पे प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उतनी रकम नहीं ली जितनी वे ले सकते थे।
5: And sometimes you are just like scared, like you might end up getting the wrong thing, and then you have to pay back to your employer or to your to the government. So these are the things that keep hitting your mind. So that's why, like, I was also playing on the safe side.
2: अगर वे फिर इस परिस्थिति में आते हैं, तो वे कहते हैं कि वे अपने नियोक्ता से अधिक प्रश्न पूछेंगे, ना कि किसी को उन्हें कुछ बताने का इंतजार करेंगे.
5: I think first of all, I will now approach them and I will ask them from the front to what sort of leave should I apply, which I think I should have done last time, but like I was expecting other way that they will come to us.
2: Dr. Adele Modolo sujhati hai ki job board jaisi sansthaon se bhi samjha ja sakta hai ki aapki kaam ki jagah par aapke adhikar kya hain.
3: If they do call job watch, they can arrange for an interpreter at no cost. So I would suggest that's a really good port of call where you can get some advice and information that takes into account the legal context and the your

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: रिसंच के बाद कार्यक्रम में वक्त पहले अंतराल का, अंतराल के उस पार सुनेंगे सप्ताह भर की खबरों का एक संक्षिप्त न्यूज रैप, समझेंगे क्या कुछ हुआ देश दुनिया में इस पूरे हफ्ते में। तो ये बने रहिए हमारे साथ SBS हिंदी पर, क्योंकि आज चल रहा है मदर्स डे स्पेशल, जहां होगी मदर्स डे स्पेशल कहानी, मदर्स डे स्पेशल गीत, और गीत चुनेंगे आप, वो भी अपनी माँ के लिए। तो आप मुझे बताइए कि आज आप अपनी माँ को कौन सा गीत सुनाना चाहते हैं। 04397997 हमारा नंबर है। छोटा सा एक अंतराल है, जल्दी से लौट रही हूं, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
4: One second you're enjoying your first day off in forever, then mid lunch your phone buzzes, a window's been broken at home and you're miles away. In one second everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली को, और आइए बिना किसी देरी के सुनते हैं सप्ताह भर की खबरों का एक न्यूज रैप, और फिर आगे चर्चा करेंगे मदर्स डे की। आपको मुझे बताना है कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। एक्चुअली आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप अपनी मामा को सुनाना चाहते हैं। और भाई आप अपनी माँ को क्या कहकर पुकारते हैं? क्योंकि मैं अपनी मदर को अम्मा कह कर के पुकारती हूँ। ओल्ड स्कूल आई नो, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है, और सच्ची कहूँ बड़ा प्यार भी आता है। थोड़ी ज़्यादा क्यूट लगने लगती है मेरी माँ जब मैं उन्हें अम्मा कह के पुकारती हूँ, और वैसे प्यार से मुझे देखती है। मदर्स डे ऐसे ही होता है, आपको अपनी मदर्स के साथ ऐसी हरकतें करनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या कहकर पुकारते हैं आप उन्हें लाड में। 04397997 हमारा नंबर है। गीत ज़रूर बताइएगा आज आप अपनी मामा को जो सुनाना चाहते हैं। फिलहाल हफ्ते भर की खबरें। है 9 मई 2026 को खत्म होने वाले सप्ताह का न्यूज रैप वृषाली जैन के साथ। वन नेशन ने जीती फेरर की सीट, आगामी बजट को लेकर कोषाध्यक्ष ने दिए बड़े बयान, और 2027 एशियन कप में सॉकरूज के लिए चुनौतियां हुई तय। और अब सप्ताह भर की खबरें विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की दक्षिणी सीट फेरर में हुए फेडरल उपचुनाव में वन नेशन

0: पार्टी के उम्मीदवार डेविड फाले ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही वे 1949 में इस सीट के गठन के बाद पहले ऐसे गैर कोएलिशन उम्मीदवार बन गए हैं जिन्होंने ये जीत हासिल की है। डेविड फार्ले ने निर्दलीय उम्मीदवार मिशेल मिलथॉर्प को हराया है। इस चुनाव में लेबर पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा था, जबकि लिबरल और नेशनल पार्टियां अंतिम मतगणना तक भी नहीं पहुंच सकी थी। ये बड़ा क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र कई दशकों से गठबंधन दलों के पास ही रहा है। हाल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व पूर्व लिबरल नेता सूजन ली कर रही थी, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में एंगस टेलर से नेतृत्व चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया था। शनिवार रात अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए डेविड फार्ले ने कहा कि ये नतीजा वन नेशन पार्टी के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने कहा कि रिजर्व बैंक के ब्याज दरों को लेकर के हालिया फैसले से आम लोगों पर बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के दबाव में और इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मंगलवार 12 मई को पेश होने वाला फेडरल बजट खर्चों में संयम पर केंद्रित होगा। सरकार बड़े पैमाने पर राहत पैकेज देने के बजाय बचत और सीमित खर्च की नीति अपनाने जा रही है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि महंगाई अब भी चिंता का विषय बनी हुई है और वैश्विक परिस्थितियों के कारण कीमतों पर दबाव जारी है। इसी वजह से बैंक ने ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है। जिम चार्मर्स ने इस बात को खारिज किया है कि महंगाई के पीछे सरकारी खर्च जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर पहले ही ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जेब पर पड़ रहा है और रिजर्व बैंक का ये फैसला हालात को आसान नहीं बल्कि और मुश्किल बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक का फैसला सरकारी खर्च को लेकर नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक दबावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। आगामी फेडरल बजट में 64 अरब डॉलर की बचत का लक्ष्य रखा गया है। कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने कहा कि ये कदम वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। इस बजट में लगभग 34 अरब डॉलर नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS में सुधारों से आएंगे। इसके अलावा निजी स्वास्थ्य बीमा और बाहरी श्रमिकों पर होने वाले खर्च में कटौती के जरिए भी बचत की जाएगी। कोषाध्यक्ष के मुताबिक इस बजट का मुख्य ध्यान ईंधन सुरक्षा, बढ़ती महंगाई और आवास संकट, उत्पादकता बढ़ाने और टैक्स सुधारों पर रहेगा। उन्होंने सुपर एनुएशन परफॉर्मेंस टेस्ट में सुधार के संकेत भी दिए हैं। ये टेस्ट हर साल सुपर एनुएशन प्रोडक्ट्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि मौजूदा व्यवस्था को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन उसे आधुनिक बनाने पर काम होगा। वहीं सिडनी की एक महिला पर आतंकवादी संगठन की सदस्य होने और संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में रहने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के काउंटर टेररिज्म असिस्टेंट कमिश्नर स्टीफन नट ने कहा कि ये कार्रवाई कई वर्षों की जांच और पुलिस अभियान के बाद की गई। उन्होंने कहा कि इन मामलों को लेकर ऑपरेशनल योजना 2015 में शुरू की गई थी और सभी एजेंसियों की सबसे बड़ी प्राथमिकता समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना थी। वहीं फेडरल सरकार का कहना है कि संबंधित लोगों की स्वदेश वापसी की व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गई। चेतावनी: अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर समुदाय के श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि इस खबर में एक दिवंगत इंडिजिनस व्यक्ति का नाम शामिल है। एलिस स्प्रिंग्स में हुई हाल में अशांति के मामले में 6 मई तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। ये हिंसा 5 वर्षीय बच्ची कुमंजाई लिटिल बेबी की कथित हत्या के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद भड़की थी। नॉर्दर्न टेरिटरी पुलिस का कहना है कि इस मामले में और गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। वहीं बच्ची के परिवार ने राजनीतिक नेताओं से अपील की है कि उसकी मृत्यु को राजनीतिक बहस का मुद्दा ना बनाएं। अगर आपको या आपके किसी परिचित को सहायता की आवश्यकता है तो बियॉन्ड ब्लू से 1300-224-636 पर या लाइफलाइन से 131114 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। समुद्री सहायता संगठनों ने चेतावनी दी है कि पर्शियन गल्फ में फंसे नाविक गंभीर मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण कई समुद्री कर्मी पिछले 2 महीनों से अधिक समय से समुद्र में ही फंसे हुए हैं। कप्तानों, इंजीनियरों, जहाज अधिकारियों और रसोइयों सहित जहाजों के कर्मचारी ड्रोन और मिसाइल हमलों के डर के बीच अलगाव और मानसिक आघात का सामना कर रहे हैं। इनमें से कई जहाज ईरान और अमेरिका इसराइल से जुड़े संघर्ष के बीच सीधे खतरे वाले इलाकों में फंसे हुए हैं। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा निगरानी संस्था यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार कई व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए हैं और कुछ मामलों में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा गोलीबारी भी की गई है। वहीं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अब तक कम से कम 11 समुद्री कर्मियों की मृत्यु हो चुकी है। और अब खबरें भारत से। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी एक बार फिर राज्य की राजनीति के केंद्र में हैं। राज्य में बीजेपी अपने संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक टकराव भी तेज होती दिखाई दी। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए पश्चिम बंगाल देश की सबसे अहम राजनीतिक रणभूमि बन गया है। इस बीच राजनीतिक तनाव के चलते बीजेपी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता के करीबी सहयोगी की हत्या की खबर सामने आई। इस घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा को लेकर बहस फिर तेज हो गई। विपक्ष ने राज्य सरकार पर राजनीतिक हिंसा रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने मामले की जाँच जारी होने की बात बताई है। दूसरी ओर तमिलनाडु की राजनीति में अभिनेता से नेता बने विजय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। उनकी पार्टी के प्रदर्शन और संभावित राजनीतिक गठबंधनों को लेकर अटकलें तेज हैं। राज्य में पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के बीच विजय की लोकप्रियता को नई राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में तमिलनाडु की राजनीति और दिलचस्प हो सकती है। अब बात भारत और पाकिस्तान संबंधों की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष विराम फिलहाल कायम है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर रिश्तों में ठहराव बन गया है। दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंताएं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा शांति सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए संवाद जरूरी होगा। और आखिर में अब चर्चा भारत के पर्यावरण की। भारत के कई पर्यावरणीय क्षेत्रों में ड्रैगन फ्लाई यानी व्याध पतंगों की घटती संख्या को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जताई। उनके मुताबिक जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक आवासों के नुकसान का असर इन प्रजातियों पर दिखाई दे रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि ड्रैगन फ्लाई पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है, इसलिए इनकी घटती संख्या गंभीर चेतावनी हो सकती है। और अंत में एक खबर खेल जगत से। सॉकरूस को 2027 एशियन कप में एक चुनौतीपूर्ण ग्रुप मिला है, जहां उनका सामना अपने पूर्व कोच ग्राहम आर्नोल्ड की टीम इराक से होगा। टोनी पॉपोविच की कोचिंग वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को ग्रुप डी में इराक, तजिकिस्तान और सिंगापुर के साथ रखा गया है। ये टूर्नामेंट अगले साल जनवरी में सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा। रियाद के ऐतिहासिक अतुरैफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर हुए ड्रॉ के मुताबिक दुनिया की 27वीं रैंक वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम अपना पहला मुकाबला 9 जनवरी को सिंगापुर में खेलेगी। सॉकरूज 2015 के बाद पहली बार एशियन कप ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगे। विश्व कप क्वालिफिकेशन के दूसरे दौर में अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहने के कारण ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ में शीर्ष वरीयता प्राप्त टीमों में शामिल किया गया था। इसी के साथ ये न्यूज रैप यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।
1: और मेरे पास आपके दो संदेश हैं। मेरे पास विहान और वाणी का संदेश आया है, जो कह रहे हैं, हाई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम एक्सट्रीमली वेल, आई होप यू वेल टू। आई वुड लाइक टू डेडिकेट माँ फ्रॉम तारे ज़मीन पर टू माय मम पिंकी, इट विल कम अप, थैंक यू। एंड राजेंद्र वोरा जी का क्रेगी बर्न से संदेश है, वृशाली जी नमस्कार, हम अपनी माँ को माता जी कहकर बुलाते थे। जहाँ तक गाने की बात है, मेरी माता जी को लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, बजा दीजिए। मैं बिल्कुल ढूंढने की कोशिश करती हूँ इस गीत को और लेकर के आती हूँ। तो दोस्तों, आज चर्चा चल रही है कि भाई आज आप अपनी माँ को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, कौन सा गीत डेडिकेट करना चाहेंगे, बताइए मुझे 0439-799-767 पर। मदर्स डे स्पेशल कहानी कमिंग अप, बस एक ब्रेक के बाद बने रहिए वृशाली के साथ SBS हिंदी पर, कहीं नहीं जाइएगा।
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: Why do people want to be at work? to feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
9: Mother's Day, this Sunday. Gifts I needed? Multiple. Time I had? Basically none. Was I stressed? Absolutely. Until I came to Macy's. Because now I'm finding gifts that feel thoughtful. A designer handbag, beautiful fine jewelry, great beauty gift sets that don't need to be wrapped. One trip to Macy's, and it looks like I planned it all along. Hurry in and save on the perfect gift at Macy's Mother's Day sale tomorrow.
1: और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को. बिना किसी देर के आइए सुनते हैं आज की स्पेशल कहानी किस्सा कहानी सेगमेंट में SBS फ्लैशबैक के हवाले से. दोस्तों SBS हिंदी पर आप सुन रहे हैं वृषाली जैन को और आपके लिए आज मैं लेकर के आ रही हूँ एक खास कहानी जिसका नाम है 6 साल का इंतजार. सुबह के 6 बज रहे थे. बाहर सूरज धीरे धीरे उगने लगा था. चिड़ियां जाग रही थीं लेकिन नंदिनी सोई ही नहीं थी. सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर अब भी जो डॉक्यूमेंट खुला था नंदिनी से कुछ और घंटों की मांग कर रहा था. नंदिनी ने अपनी काली एर्गोनॉमिक कुर्सी पर पीछे बल डालते हुए गर्दन को पहले बाएं झटका दिया और फिर दाएं. घंटों से इसी कुर्सी पर बैठे प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी. कॉफी की तेज तलब थी और उठकर बनाने में उतना ही आलस. ऐसा तो सबके साथ होता है ना. कितनी ही बार भूख लग रही होती है या कॉफी या चाय चाहिए होती है और मन कहता है यार कोई बना के दे दे. नंदिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही था. हफ्ते भर की थकन, काम, लैबोरेटरी के चक्कर, डेडलाइन, नींद की कमी और कॉफी की चाहत, सब कुछ एक साथ आ चुभे थे. जितनी तेज कॉफी की चाहत आई थी उतनी ही तेज याद आई थी अम्मा. पर अम्मा तो 12,000 किलोमीटर दूर इंडिया में थी और 6 साल से उसके ऑस्ट्रेलिया के रहने में एक बार भी उसके पास नहीं आई थी. नंदिनी की आंखें अनायास ही टेबल पर रखी फैमिली फोटो पर चली गई थी. अम्मा, बाबा, नंदिनी और नंदिनी का छोटा भाई प्रखर. 34 साल की नंदिनी ने जब 6 साल पहले रिसर्च करने के लिए ऑस्ट्रेलिया आने का मन बनाया तब अपने लिए सिर्फ खुद को ही लड़ता पाया. 28 की हो गई हो नंदू, अब तुम्हें विलायत भेज दें, अच्छा रिश्ता आया है और वो पसंद करते हैं तुम्हें, पापा ने कहा तो नंदिनी को अपनी ही उम्र किसी तमाचे सी महसूस हुई थी. हाथ में स्कॉलरशिप का लेटर और कस गया था. अम्मा ने कहा था अब जाओगी तो कब पढ़ाई खत्म होगी, कब वापस आओगी, महेश्वरी जी अपने लड़के के साथ अगले हफ्ते आने की कह रहे हैं. अब घर गृहस्थी का सोचो बेटा, आखिर शादी करनी है कि नहीं. प्रखर उससे 2 साल छोटा था और इसी पर तपाक करके बोला था अभी ही देर नहीं हो गई अम्मा. जैसे उम्र न हुई कोई रेलवे की गाड़ी हो गई जिसके सीटी बजने के बाद पैसेंजर सफर कर ही नहीं सकेगा. अच्छी खासी नौकरी थी उसकी उस समय लेकिन रिसर्च की चाह बहुत गहरे कहीं थी उसके अंदर. इसीलिए उसने फॉर्म भरा था, बाकायदा महीनों की मेहनत से एक रिसर्च प्रपोजल तैयार किया था, अप्लाई किया था और जब कॉल आया तो वीजा भी खुद ही प्रोसेस किया था. उसको सिडनी से बुलावा आया था और उस पर भी स्कॉलरशिप के साथ. और वो जानती थी कि घर में किसी को भी ये समझाना आसान नहीं होगा कि ये मौके बार बार नहीं आते. तो जिस हफ्ते महेश्वरी जी उसको देखने आने वाले थे उसी हफ्ते वो भारतीय मानकों पर खरी उतरने वाली एक सेटल जिंदगी के सब मानक तोड़कर ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भर यहाँ चली आई थी. पापा एयरपोर्ट नहीं आए थे, महेश्वरी जी के साथ हुई फोन पर बातचीत उन्हें इतना दुखी कर गई थी कि उसके बाद उनके और नंदिनी के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। शुरू शुरू में वो अम्मा को समझाती थी कि स्कॉलरशिप होने के अपने मसले थे, अपने प्रेशर थे जो वो नहीं संभाल पा रही थी। दिख रहा है कितना नहीं संभाल पा रही है तू। कहाँ थी पिछले हफ्ते? देखी तेरी फोटो हमने सोशल मीडिया पर, अम्मा ने तलखी से कहा था। तो क्या कहीं आऊं जाऊं नहीं, परेशान हूं तो मुस्कुराऊं नहीं, नंदिनी ने पलट कर पूछा था। अपनी परेशानी, अपनी मुस्कुराहट ही तो देखती हो तुम नंदिनी, तुम तो बोरिया बिस्तर बांध कर चल दी, लेकिन यहाँ पापा की हालत सोची। महेश्वरी आंटी ने सबको खूब कहानी सुनाई कि हमने उन्हें कैसे भरोसा दिलाकर धोखा दे दिया, और अब हालत ये है कि कोई रिश्ते की बात भी नहीं करना चाहता, अम्मा एक रौ में बोलती चली गई। अम्मा तो बोल गई, लेकिन उस दिन नंदिनी के अंदर कहीं कुछ चुप हो गया था। समय के साथ घर पर बात तो होने लगी थी, लेकिन पापा और उसका रिश्ता कभी ठीक ही नहीं हुआ। अम्मा से बुरी बात होती थी, फिर भी वो अपनी परेशानियां नहीं कह पाती थी। हाल ही में फिर उन्हीं महेश्वरी जी ने फिर उसी बेटे का रिश्ता भेजा, और इस बार ये कहते हुए कि वो ऑस्ट्रेलिया भी चला जाएगा नंदिनी के पास। लेकिन दो हफ्ते पहले नंदिनी ने साफ मना कर दिया था। वही लोग थे, लेकिन अब जब नंदिनी यहाँ साइंटिस्ट बन गई थी, यूनिवर्सिटी में उसकी अपनी रिसर्च लैबोरेटरी थी, तब वही धोखेबाज लड़की अच्छी हो गई थी। दो ही हफ्ते हुए थे उसे अम्मा से बात किया। वो रोज एक फोन कर लेती थी, लेकिन बीते दिन से तो उनका फोन ही बंद आ रहा था। कैसे हर बार वो ही हार जाती थी ना दुनिया से, पर अब उसका समझाने का मन खत्म होता जा रहा था। घड़ी ने सुबह के 8 बजने का इशारा किया था। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। टेबल पर रखे फ्रेम को उसने पलट कर रखा और फिर लैपटॉप की ओर ध्यान देने लग गई। अचानक डोरबेल बजी थी। इतने सवेरे तो कोई नहीं आता उसके घर। फिर उसने दरवाजा खोला तो सामने अम्मा थी। अम्मा, अम्मा आप, मतलब आप? नंदिनी समझ नहीं पाई कि क्या कहे क्या करे। 6 साल बाद अपनी माँ को अचानक सामने देखकर क्या कहता है कोई? दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी? अम्मा ने पूछा था। नहीं, अंदर अंदर नहीं, नहीं, सामान यहीं छोड़ दो आप, मैं लेकर आती हूँ। अम्मा घर को ऐसे देख रही थी जैसे घूंट घूंट पी रही हो। जब वे लिविंग रूम से आगे नहीं बढ़ी तो नंदिनी बोली, टेरेसेस कहते हैं इन घरों को अम्मा, ये रेनोवेटेड है तो ऊपर का पूरा फ्लोर मेरा है, नीचे लैंडलॉर्ड रहते हैं, आओ चलो। आप थक गई होगी ना, मैं फ्रेश होना है, चाय बनाऊं या लेट होगी? लंबी थी क्या फ्लाइट, कनेक्टिंग थी? नंदिनी बोलती जा रही थी। अरे मेरी माँ रुक, फ्रेश होना है फिर चाय पीऊंगी, ठीक है? नंदिनी ने सामान अपने कमरे में लगाया और माँ के हाथ में एक तौलिया पकड़ा दिया। सामान बाद में खोल लेना, फिलहाल ये लो, कैबिनेट में जरूरत का सब सामान है बाथरूम में। अम्मा अम्मा बाथरूम में गई तो 6 साल की दूरी के अचानक सिमट जाने का एहसास एकदम से नंदिनी को किसी झटके सा लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह ले अम्मा का यूं अचानक आना। खुशी, रोमांच, हैरानी, सब कुछ उसे एक साथ महसूस हो रहा था। और फिर आया डर। इलाही, कमरे की हालत देखकर जो डांट पड़ती वो। 3 रोज से तो वो केवल कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन में छुट्टी हुई थी। कॉफी के कप एक किनारे इकट्ठा होते जा रहे थे। सुबह कॉफी ना बनाने का एक आलस ये भी था कि अब घर में साफ कप बचे ही नहीं थे, चाय किस में पिलाती? माँ की डांट का डर और बेटी के काम की फुर्ती में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिश्ता होता है। सो 15 मिनट में जब तक अम्मा बाथरूम से आई, नंदिनी बिस्तर झाड़ कर, झूठे बर्तन डिशवॉशर में लगा कर, 2 कप हाथ से धोकर चाय चढ़ा चुकी थी। उसने अम्मा को कमरे में जाते देखा तो पूछा, कुछ खाने को साथ ले आऊं? अम्मा कमरे की बदली सूरत देख रही थी। माओ की नजर बड़ी पैनी होती है, खासकर जब मामला बेटियों का हो। तो बेतरतीब चादर का अचानक फैब्रिक फ्रेशनर से खुशबुदार किया जाना और डिशवॉशर की आती आवाज, सब सुन देख रही थी वो। और देख रही थी कि कैसे सफेद दीवारों पर रंग बिखेर रखे थे उनकी बिटिया ने। घर की तस्वीरें थी, उनकी और नंदिनी के पापा की एक और फोटो थी, नंदिनी के हाथ के स्केचेस थे, क्रोशिया के पैच थे, और प्रखर जो हर साल घर से दिवाली की एक सेल्फी भेजता था उसका एक कोलाज भी था। नाराजगी भले हो, लेकिन उनकी बेटी उन्हें भूली नहीं थी।
10: जो डर उनको ऑस्ट्रेलिया लाया था वो कुछ कम हो गया था। कुछ दोस्तों के साथ की भी तस्वीरें थी उसकी। एक तस्वीर थी शायद नंदनी की लैबोरेटरी की। उसने सफेद कोट पहना हुआ था और हाथ में एक टेस्ट ट्यूब थी। आंखों पर बड़े एक्सपेरिमेंट वाले ऐनक थे। सुषमा जी की उंगलियां बिना सोचे ही अपनी बेटी के चेहरे को सहलाने लगी थी। आपने बताया नहीं कुछ खाओगी या नहीं, तो मैं टोस्ट ले आई हूँ। खारी बिस्किट भी है, आपको पसंद है ना? अभी लेती हो चाय के साथ? नंदिनी ने पीछे से आते हुए पूछा। तू कैसी है री? सुषमा जी ने नंदिनी के हाथ से चाय की ट्रे लेते हुए अपना हाथ उसके गाल पर रख दिया। आंसू आंख तक आए तो, लेकिन नंदिनी टेबल की तरफ घूम गई। मुझे क्या होना है अम्मा, वैसी ही हूँ जैसी फोन पर सुनाई देती हूँ। मेरी बात सुन नंदू। सब सुनूंगी अम्मा, पर आज ना बड़ी जरूरी कॉन्फ्रेंस है यूनिवर्सिटी में, तो यूं करो कि आप भी तैयार हो जाओ। आप भी चलना, मैंने पास के लिए एक मेल डाल दिया है। सुषमा जी ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी अटैची से निकाली और तैयार होकर नंदिनी के साथ यूनिवर्सिटी पहुंची। उस दिन उन्होंने पहली बार देखा कि नंदिनी को लोग कितनी इज्जत से, कितने प्यार से देखते हैं, कितने स्टूडेंट्स नंदिनी के पास आकर उससे बातें करते हैं, कितने लोग उनसे भी आकर मिले। नंदिनी सबको बड़े प्यार से समझा रही थी। This is my mom. She came from India just today. Surprised me, you know. लौटते में नंदिनी बोली, अम्मा घर पर कुछ खाने को नहीं होगा, थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं या फिर कहीं चल चलेंगे। चलना क्यों है, मैं थेपले लेकर के आई हूँ, अचार के साथ खाएंगे और चाय बना लेंगे, अम्मा ने कहा तो नंदिनी को हंसी आ गई। अगले एक हफ्ते नंदिनी उनको अलग अलग जगह घुमाती रही, कभी ओपेरा हाउस तो कभी ब्लू माउंटेन्स, कभी मैनली बीच तो कभी नेशनल म्यूजियम। एक शाम वो उन्हें सिडनी की इवनिंग क्रूज पर भी ले गई थी। सुषमा जी को समंदर बहुत पसंद था, पर कभी किसी ने पूछा ही नहीं, ना उन्होंने ही कहा। और अब उनकी बेटी हजारों मील दूर समंदर किनारे आकर बस गई थी, और वो आई थी परत दर परत रिश्तों पर जमी 6 साल की शिकायतों की धूल साफ करने। लेकिन वे जब भी बात करती तब नंदिनी उनको किसी और बात में उलझा देती, या तो अगले दिन कहाँ जाना है इस बात में, या फिर क्या खाना है इस बात में। यूं भी उनकी बेटी पूरा दिन चकर गिन्नी की तरह नाचती। यहाँ तो मदद का कोई सहारा ही नहीं था, बाहर भीतर सब काम खुद। तो कई बार वो सोचती कि जब उनकी बेटी पहले पहल आई होगी तो कैसे संभाला होगा उसने सब कुछ, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। नंदिनी ने उन्हें घर के आसपास की सब जगहें दिखा दी थी, सब्जी कैसे लेनी है, कैसे बटन दबाकर सड़क पार करनी है, कैसे स्कैनिंग खुद करनी है। तो वो दुनिया को ना अब नंदिनी की नजरों से देख रही थी, और पहली बार उस आजादी को महसूस कर रही थी जो उन्होंने कभी नहीं जी थी। एक शाम नंदिनी उनके पास आई और बोली, अम्मा ये एक डेबिट कार्ड है, रख लो, मुझे यूनी जाना रहता है और आपको कहीं जाना हो, कुछ लेना हो तो आसान रहेगा। मेरे पास मेरे रुपए हैं, पापा ने दिए हैं। अम्मा कैश क्यों रखना है, आप ये रखो ना, और उन रुपयों को खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा इसमें मेरे पैसे की बात कहां से आई, इट्स जस्ट इजियर। आसान कहां है कुछ, क्या है आसान तुम बताओ, यहाँ इतनी मुश्किल जिंदगी जीती हो, वहां पापा परेशान है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारे पैसे देखने आई हूँ। मुझे तो यही नहीं पता अम्मा आप अचानक आई क्यों हो, क्या देखना था कि कोई लड़का तो नहीं है या कितना बिगड़ गई नंदिनी। ठीक हूँ मैं, अकेले और कुछ भी नहीं देखना है मुझे, किसी को कुछ दिखाना भी नहीं है। जब इतने साल नहीं पड़ी थी तो अब भी रहने देती नहीं, पर अब महेश्वरी जी ने फिर से कुछ कह दिया होगा और देखने चली आई तुम। टेबल पर डेबिट कार्ड रख नंदिनी बाहर चली गई। सुषमा जी फटी फटी आंखों से बंद हुआ वो दरवाजा देखती रही। वो जानती थी एक दिन ये गुबार फूटना ही था। अगले 2 दिन नंदिनी सुबह जल्दी निकल जाती और रात देर से आती। सुषमा जी नंदिनी की पसंद का खाना बनाती, दोनों माँ बेटी चुपचाप खाती और सोने चले जाती। एक सुबह सुषमा जी नंदिनी से बोली, ड्रॉअर में से कुछ मिला था, जो भी देखने आई थी ये देखूंगी, ये नहीं लगा था। और फिर उन्होंने उसके सामने एक सिगरेट का पैकेट और लाइटर रख दिया। अम्मा का डर और बेटी की फुर्ती, बताया था ना मैंने आपको, अम्मा वो कभी कभी बहुत स्ट्रेस हो जा, मतलब वो कि नंदिनी के पास शब्द ही नहीं थे। रहने दे नंदू, बिगड़ापन तो देख ही लिया। सच्ची अम्मा वो कभी प्रखर की ड्रॉर से भी मिली थी मुझे। तुम दोनों भाई बहन ब्याह करो या मत करो, मेरी जान जरूर निकाल लोगे। अच्छा अच्छा अम्मा सुनो, चलो आज वहां लेकर जाती हूँ जो मेरी सबसे पसंद की जगह है। नंदिनी सुषमा जी को उस दिन लापरूज लेकर गई। उसने उन्हें ऐसी जगह नाश्ता कराया जहां पैरों के नीचे से भी समंदर दिखता था। फिर दोनों माँ बेटी बेयर आइलैंड ब्रिज के पास जूते उतार नंगे पैर समंदर के किनारे चलती रहीं। सामने जितना बड़ा समंदर था, दोनों के बीच उतनी ही गहरी खामोशी। कुछ देर बाद सुषमा जी वहीं सफेद रेत पर बैठ गई। नंदिनी हाथ में अपने जूते लिए उनके बिल्कुल बगल में जा बैठी। अपने घुटनों पर सिर टिकाते हुए वो दूर क्षितिज की ओर देख रही थी। फिर अचानक बोली, सिगरेट की आदत दिल्ली में ही लग गई थी अम्मा, यहाँ नहीं। तुम पहली नहीं हो जिसने पकड़ा है। प्रखर ने देखा था एक दिन घर की छत पर। प्रखर ने वादा लिया था कि साल की 10 सिगरेट से ऊपर नहीं पियोगी दीदी। माँ, मैंने वादा नहीं तोड़ा। मैंने पूरी जिंदगी पापा को हम सबके लिए परेशान देखा है अम्मा, और सबसे ज्यादा परेशान देखा मेरी शादी के लिए। मैं कुछ बनना चाहती थी, करना चाहती थी, ताकि उनके माथे से वो चिंता की लकीरें हटा सकूं। पर अम्मा, मैं तो खुद ही हट गई। इतना दूर कैसे हो गई मैं? आखिर के कुछ शब्द भीगे से थे। तू दूर नहीं हुई गुड़िया, हम ही समझ नहीं पाए। तूने पूछा था ना क्यों आई मैं। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था अम्मा, सच्ची। सुन मेरी बात। मैं आई महेश्वरी जी को मना करने के बाद। पापा ने तुझसे मना की, मेरे और प्रखर के मना करने के बावजूद। प्रखर को पसंद है कोई, वो सगाई करना चाहता है, कहता है तुझसे बात करवा चुका है, पर पापा नहीं माने। बोले तेरी शादी के पहले उसकी शादी नहीं कराएंगे। उसी समय महेश्वरी जी का रिश्ता आ गया। लेकिन एक बार जो लोग आपकी इज्जत ना करें ना, उन पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें पहले ही मना कर दिया था और कहा कि नंदिनी अब उनके या किसी और के नहीं, पहले अपने घर आएगी। नंदू, घर की खुशी 6 साल से घर में है ही नहीं। उदास सब थे, लेकिन इस बार मैंने जिद ठान ली थी कि मुझे अपनी बेटी को जानना है, उसे घर वापस लेकर के आना है। और जानती है, यहां आने से पहले मुझे तुझ पर भरोसा था, लेकिन अब नाज है। तूने नई जिंदगी बनाई भी, बसाई भी। प्रखर की नई गाड़ी के डाउन पेमेंट में तूने उसकी मदद की ना अम्मा। सब पता है मुझे। घर चल नंदू, घर चल। अब की दुनिया के 4 लोग नहीं, हमारी बेटी से जुड़ा हर फैसला हमारे घर के 4 लोगों का होगा। पापा इंतजार कर रहे हैं बेटा। नंदिनी और सुषमा जी के बीच जो 4 अंगुल का फासला था, नंदिनी ने वो उनकी गोद में सर रख कर भर दिया। उस रोज समंदर किनारे आंसुओं से सुषमा जी ने 6 साल की शिकायतों की धूल धोई थी, और नंदिनी ने एक उम्र भर का भार। बस इतनी थी कहानी, और इसी के साथ अब एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर के आती हूँ मैं आपकी पसंद के गीत। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर।
11: Starting a new life in Australia isn't easy.
12: A lot of companies have rejected me.
13: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
11: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
14: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
15: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS Learn में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
16: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है, जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
17: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
18: Hey, good morning.
17: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
18: Yep, they sure are.
17: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
18: It's all right.
17: We're so far up here.
18: Look at me. Take a deep breath.
17: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
1: और SBS हिंदी पर वैशाली के साथ अब चलाते हैं रेलो, माफ कीजिएगा, गीतों की रेलगाड़ी मदर्स डे स्पेशल पर। और ये हैं आपकी पसंद के गीत। मेरे पास हेमलता पुरोहित जी का संदेश आया था, जिन्होंने मुझे शिकायत भी कर दी है कि थर्सडे को उन्होंने मुझे गीत भेजा था जो मैं बजा नहीं पाई थी। कभी कभी टाइम कम रह जाता है हेमलता जी, आज बजा दूँगी पक्का। और मेरे पास यावर जी का संदेश आया है मेलबर्न से, जो कह रहे हैं कि उन्हें कहानी बहुत अच्छी लगी। एंड चेतन जी भी यही कह रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी एंड यू नरेटेड इट सो वेल। थैंक यू सो मच चेतन जी। हियर्स कमिंग अप ऑल द मदर्स डे स्पेशल सॉन्ग्स दैट यू रिक्वेस्टेड।

0: बस इसी के साथ मैं जा रही हूँ, पर आप आज अपनी मदर्स को स्पेशल फील कराना मत भूलिएगा। और अगर आप अपनी माँ के आसपास नहीं हैं तो उनके बारे में बातें ज़रूर कीजिएगा। बस इसी ख्याल के साथ दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।
1: अरमानों का गला देख के
2: Now that you're up to date,
3: let's kick the music back in.
2: We are going non-stop
3: all night.
4: I'm talking about Bollywood.
2: First up, it's the Bollywood session. 2 hours of hits right now on SBS South Asian.

0: South Asian, your news from here and hits from home.
1: Yo, lavish.

0: कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था।
1: SBS साउथ एशियन।

बदल। पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा।

वाली गल कर ले, प्यार मेरे नाल कर ले, काम सारे गल कर ले मेरे यार। तू मेरी बाँह फड़ ले, आंखें ये आ पढ़ ले, सीने से दिल कर ले मेरे यार।

कहां से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया।

यार जैसी होशियारी ये फिजूल है, तेरा ख्याल ठेकेदार है तू वक्त का, बदल के रहता है ये वक्त का उसूल है। हरकतों पे कब तलक मेरी नजर रखेगा तू, करते करते पहरेदारी एक दिन थकेगा तू। मैं मगर नहीं थकूंगा, फैसला ये है किया गलत को भी सही तरह से करने।

0: पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तुम्हारा मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती।
1: Ayo, G-Funk.

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

बहुत गौर से सुनिए आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एक अतरंगी भूत की कहानी, कभी नहीं सुनेगी आप ऐसे कहानी। नानियों के पीछे पड़ी है ये भूत, उसके बिस्तर में सो रहा है।

0: South Asian.
1: तो कैसे हैं आप लोग?
2: एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जल

गरीबों की लगी सेल, गलती है किसकी और बदले में कौन चाहता जेल, पन्ना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल, मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेटफुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल, अकेला ही करूँगा मैं सारा वेकफुल, याद रखना I'm the one and only big bull.

हुण तेरा मैनू मोह नहीं आउंदा, तैनू भी पता क्यों नहीं आउंदा। पागल कमली झली रहण दे, बस हुण मैनू कल्ली रहण दे, बस हुण मैनू कल्ली रहण दे।